0: BridgeMohan. Contact us at bridgemohan.com.
1: सेंट्रल मिसिसागा दे रहन वाले हो ए मौका ना गवाओ बैलीमोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने कंटेंपरेरी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने सीमित समय ले HST दे विच खास बचत दा फायदा लो हाईवे 401 407 अते 410 गो ट्रांजिट शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटां दी दूरी ते सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होने दा मौका ना गवाओ आज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com BALLYMORE homes.com

0: ताजिया सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मान रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मान एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन कॉल 905-928-8557 अनाज मार्ट
1: फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज या फिर होवे लोन सोचो ना बस बिल्कुल भी हुणे मिला फोन
2: रश्मीत कॉल एट 647-539-4499
1: अकाल अकाल अकाल मॉर्गेज
3: होवेगी मुद्दियां ते गलबात रखांगे तुहानू अपडेट
4: हासे चट्ठे नाल तुहाडा दिल लाऊगा संधुआ दा मुंडा बड़ा ग्रेट
5: सच कहे जे हुंदा
6: चुल्ले ते पकदी रोटी सच है
7: मिट्टी जुगदी फसल सच है
6: गुरु दी पाणी सच है

ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउण के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा इसलिए तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नु सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे डाइनिंग टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी ते फिर देर किस गल दी अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton. ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छूमंतर हो जावेगी आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स स्पाइसेस स्नैक्स ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओह सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन, कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: सेंट्रल मिसिसागा दे रहण वाले हो, ए मौका ना गवाओ। बैलीमोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स, जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने कंटेम्पररी टाउन होम, हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने। सीमित समय ले HST दे विच खास बचत दा फायदा लो। हाईवे 401, 407 अते 410, गो ट्रांजिट, शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटा दी दूरी ते। सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होण दा मौका ना गवाओ, अज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com, BALLYMORE homes.com।

0: 30 सेकेंड नहीं ज्यादा टाइम लगा, पर एनीवे मतलब पर बहुत मन पागी खबर, चलो सुन दे जी।
1: चलो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल जी, लो फिर हम चलना तो फिर गीता।

0: launch of 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons te baith jaiye.
0: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao na nu. Private booths ne full privacy mildi hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग होगी।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कॉल करो 9054512600 9054512600
2: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे हैं कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे हैं जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस तुहानू डेट नू प्रॉपरली असेस करन मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करदे ने इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो ज्यादा इंफॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200
3: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही ले लवां पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां
4: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं
5: जी हां जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है तो तुहाडी पसंद दा मेक इन मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल विल सेखो 416-819-6000
6: ड्राइव कर रहे हो शो नो एंजॉय कर रहे हो कुछ भूल रहे हो
7: ड्राइविंग लाइसेंस
6: नो
7: पुलिस ऑफिसर
6: नो नो
7: ट्रैफिक लाइसेंस
6: नो
7: देन
8: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी 647-325-9100 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना
10: पापा पापा सुनते क्यों नहीं चॉकलेट लेनी है
11: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
12: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो हेलो हेलो
13: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1 रेडियो आवाज

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $99 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-765-2340 647-765-2340।
3: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

वाह जी वाह, बड़े ही खूबसूरत है कवाली है, इस कर्म का करूं शुक्र कैसे अदा। सो मैनू तो लगता है कि फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम ही लगाई और सुनी भी पहली बार ही है। कई बार कई मकबूल कवालियां होर होंदियां तो आप ज़्यादातर उन्होंने ही बार बार लाने हैं ना, पर बड़े ही प्यारे बोल है तो कमाल ही है। और किसी ने बड़ा वधिया जिहड़ा कमेंट भी किया है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। वाह जी वाह।

0: पॉइंट बाई बाई 416-265-2222।
1: कह लो रहा ना फोन आया, कहने राजा वड़िंग गौन ते परगट सिंह बनाता प्रधान।
0: अच्छा जी,
1: परगट सिंह ओही नहीं जिहड़ा हाकी दा प्लेयर हुंदा किसे जमाने च, हुण तां बड़े शैलर शूलर ने, चंगा मोटा माल आ इहदे कोल। हां तुहानूं नहीं बनाता किसे ने, मैनूं नहीं बनाता किसे ने, पैसे वाले ही बनदे आ।
0: बिलकुल सही गल,
1: परगट सिंह नूं प्रधान बनाता जी पंजाब कांग्रेस दा। अगां हुण इलैक्शन च देखदे आ की करदा। स्कारबरो विच हिट एंड रन की घटना तो बाद पुलिस ड्राइवर की भाल कर रही है, एक बंदे की मौत हो गई। मिसागा विच हादसे तो बाद एक गंभीर जख्मी, एयरपोर्ट रोड अते चर्च हिल एवन्यू ते एक्सीडेंट होया। टैक्सस ने डिकलेयर करता एमरजेंसी,
0: ठीक है जी।
1: तेल की शॉर्टेज आ गई, तेल की शॉर्टेज तो गल याद आई है, अद्धी रातों रात 6 सेंट वधिया पेट्रोल,
0: ठीक है जी।
1: अज अद्धी रात नूं 6 होर वध जाणा।
0: अच्छा पवा ली अज,
1: मैं कहा पवा लिया, चट पिछे हुंदा बूट ओह वी भर लो, केनिया रख के भर लो, केनिया रख लो, ड्रम रख लो, ढोल रख लो, डोलू लै जाओ, गिलास लै जाओ।
0: हां जी,
1: यानी कल थाई 12 सेंट उपर हो जाना। हां एक किसी ने यह भी आख्या कि वीकेंड तो शायद थले भी आ जाए, शायद वह शायद छोड़ो अज करा
0: लो, भरा लिए ना अद्धा टैंक,
1: नहीं भरा लो भरा लो। ऑलराइट, होर खबर जो खबर है कि तलविंदर सिंगराजी जी के मुंह से मास्क जहा पाया हों,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: उन्हें एक नवा गाना रिलीज करता,
0: ठीक है जी।
1: आसे पासे गाने का नाम,
0: अच्छा मैं आसे पासे कितने तेरे रिलीज किया।
1: ये तुम देख सकते हो devtadla.com से जाके। ऑलराइट, जाने आने जतेंद्र भाई तो होर भी लिस्टिंग लेने, स्टे ट्यून।
2: जरूर एक चक्कर लाओ 6085 टॉमकन रोड, 6685 टॉमकन रोड परिवार याद रखना है, नाल डील दे रहे जिन्हें परिवार ने मास्टर बेडरूम का बेडरूम सेट लेना। जी हाँ, किंग साइज का बेडरूम सेट, व्हाइट कलर का लैकर फिनिश, किंग साइज का बेड, हेडबोर्ड के एलईडी लाइटा, हाइड्रोलिक स्टोरेज, ड्रेसर मिरर एलईडी लाइट, नाइट स्टैंड के उपर वायरलैस चार्जर। सो किंग साइज का हाइड्रोलिक स्टोरेज वाला बेडरूम सेट, ड्रेसर मिरर एलईडी लाइट, नाइट स्टैंड के उपर वायरलैस चार्जर, कंप्लीट बेडरूम सेट जिदी रेगुलर कीमत $3500 सी, पर जिन्हें परिवार साढ़े को इस वीकेंड के उपर पहुंचन गए पूरा बेडरूम सेट $1499 का। जी हाँ, 1499 दर दे विच किंग साइज का हाइड्रोलिक स्टोरेज वाला पूरा बेडरूम सेट तुसी अपने घर लेके जा सकते हो। सो जरूर एक चक्कर लाओ 6085 टॉमकन रोड के उपर, 6685 टॉमकन टॉमकन टॉमकन रोड नु परिवार याद रखना, ते नाल दी नाल डील दे रहे जिन्हां परिवारों ने रियल मार्बल का डाइनिंग टेबल लेना। जी हाँ, गोल्डन बेस चाहिए, सिल्वर बेस चाहिए, रसो बेस भी तुहानू गोल्डन ते सिल्वर दोनों मिलणगे, ते रियल मार्बल का डाइनिंग टेबल, व्हाइट कलर का टॉप। सो रियल मार्बल का टेबल जिदी रेगुलर कीमत $1200 सी, स्पेशल इस वीकेंड लई $399 दा रियल मार्बल दा टेबल, डिजाइनर बेस दे नाल $399 दा मिलूगा, ते हरेक परचेज दे नाल तुसी कोई भी किसी भी तरह की फर्नीचर की बाइंग करनी है, परचेज करना चाहते हो, तो जरूर एक चक्कर लाओ 6085 टॉमकन रोड के उपर, 6685 टॉमकन रोड, डेरी टॉमकन की मेन इंटरसेक्शन, हाईवे 410 तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी के उपर, 6685 टॉमकन रोड। भाजी
1: बड़ी मेहरबानी सर, जे किसी ने अपना ट्रक वेच के उन्हों अपग्रेड करके नवा लेना
0: जी,
1: जां वैसे ही उन्हें वधिया क्वालिटी का ट्रक लेना है
0: जी,
1: नवयां वर्के ट्रक खड़े ने निस्कू ट्रक वालियां कोले, उन्हां नाल भी तुहाडी गलबात कराउण दी कोशिश करदे आ, लेकिन पहला क्विक ट्रक दा आ सुनेहा।
3: वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आहे ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब, लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी, क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL because we care.
1: अभिषेक जी वेलकम टू द शो।
4: मैं अभिषेक रियल्टर, आज बहुत ही सोनी एक्सक्लूसिव लिस्टिंग्स लेके आया जी, उस तो पहले सारे लिस्टनर्स नु बहुत बहुत धन्यवाद, आपा लंदन वाला घर करता है फर्म सोल्ड। हुन सुनो जी कमर्शियल लिस्टिंग्स, जे तुसी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, साडे कोल प्रॉफिटेबल ब्रेकफास्ट प्लेस बहुत ही वड्डी फेमस फ्रेंचाइजी दे नाल विद पैटियो एंड इनडोर सिटिंग अवेलेबल है जीटीए दे अंदर, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਸਟਨ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ, ਬਰੀਟੋ ਬੋਇਸ ਤੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ।

एक्सलेंट लोकेशन, सेंट थॉमस के अंदर कमर्शियल बिल्डिंग अवेलेबल है जिसके अंदर कन्वीनियंस स्टोर बने हुए, दो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ने सिर्फ और सिर्फ 6,99,000 के अंदर। रेजिडेंशियल लिस्टिंग के अंदर देव पाजी मिसिसागा लॉर्ने पार्क एरिया के अंदर लग्जरी होम 5+3 बेडरूम का 6500 स्क्वेयर फुट लिविंग स्पेस, 60x250 फुट का प्रीमियम लॉट, एब्सोल्यूटली अमेजिंग लग्जूरियस प्रॉपर्टी अवेलेबल है जी। किपलिंग स्टेशन के नाल एक बेड एक बाथ का कॉन्डो, नवी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 3,99,000 के अंदर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लंडन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख के अंदर विद लीगल बेसमेंट, कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी, $4,300 रेंट से चढ़ी हुई अवेलेबल है। बैरी के अंदर 4 बेडरूम का घर, 1 बेडरूम की बेसमेंट, ऑफ मार्केट डील है। जेकर तुसी बाय सेल या इन्वेस्ट करना चाहते हो मैनू हुने कॉल करो, अभिषेक रियल्टर 647-792-7000, 647-792-7000।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
2: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बंदा है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 and 10।
3: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
4: आज
5: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। नाले ढिलो वीडियो को गुरबाणी रेडियो भी है। डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए। पाजी सेलिब्रेशन 40 years इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
5: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा।
7: दोस्तों मैं रविंदर बडाली ते मैं आ रहे जी 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर दे विच तुहाडे अपने शहर तुहाडी डिमांड दे
8: बदलाम करती नाले मैं ते के ओ दी मिठी चोरी।
7: ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसलिए अपने अपने टिकट बुक कर लो ताकि इस बार किसी शो मिस ना करो। मिलते हैं फिर 11 अक्टूबर टोरंटो रोज थिएटर शाम 7 बजे।

0: तरह अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
1: 416-570-0157 जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा। What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਲਾਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅੱਜ, ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ, ਅੱਜ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗਲੈਕਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡ। 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਲੈਕਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡ 7 ਵਜੇ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੂਡ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਟੇਬਲ ਲਵਾਤਾ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਟੇਬਲ 7 ਵਜੇ। ਸੈਪਰੇਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6477973162 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6477973162 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕਟ ਬਚੀ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਰਖਾਤੀ ਹਨ, ਔਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6477973162 'ਤੇ। ਜੀ ਕਿਰਨ ਜੀ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਡਿਲੀਜੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਸਡ ਮੰਥਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਬਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਪੀ ਫਰਾਈਡੇ ਆਪਕੋ ਔਰ ਆਪਕੀ ਟੀਮ ਕੋ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਸੋਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਂ ਜੋ ਵੋਟਸ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਸੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਸੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਅਬ ਹਮ ਲੋਗ ਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹਮ ਲੋਗ ਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਰਿਨਿਊਵਲ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੋ ਰੇਟਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਟਿਲ ਹਾਇਰ ਰੇਟਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦੈਟ ਐਂਡ ਹਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਦੈਮ?
2: देखिए, मॉर्गेज रिन्यूअल्स के लिए आप जो बात कर रहे हो, मॉर्गेज रिन्यूअल का सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज यही है, जो कंसर्न हैं, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है होम ओनर को, यही आती है कि रिन्यूअल के टाइम पे अगर उनकी मॉर्गेज पेमेंट इंक्रीज हो जाए तो हाउ दे गोना मैनेज द मंथली पेमेंट। तो सबसे उसके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज यही है, और उसके लिए कपल ऑफ इश्यूज हैं। एक तो अगर आपकी मंथली पेमेंट बढ़ जाए, अगर आपके कुछ इनकम इश्यूज आ गए हैं, आपकी इनकम कम हो गई है, आपके क्रेडिट आपका जो है नीचे हो गया है, और आपको ये फियर होता है कि मेरी मॉर्गेज रिन्यू होगी नहीं होगी, ये भी कंसर्न है, क्योंकि काफी होम ओनर को रिन्यूअल्स लेटर नहीं आ रहे, और इनफैक्ट बैंक इज डिक्लाइनिंग टू रिन्यू based maybe they have missed some mortgage payment, maybe they having some different information in their record. So bahut sare reasons hain renewal ka time pe, but hum abhi wo batayenge ki jiske andar client ko help karegi. Dekhiye, aapka renewal jo hai kisi bhi homeowner ka residential renewal ki baat ho rahi hai, 5 se 6 mahine pehle ye activate ho jata hai, matlab आपको ईमेल भी आ जाएगी, आपको मोबाइल ऐप में भी नजर आएगा, आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा किरण जी, बहुत ही बेसिक कंसर्न ये रहता है कि मैं क्या रेट लूं, फिक्स रेट लूं या वेरिएबल रेट लूं, है ना, मेरे लिए क्या बेटर है? देखें, ये आपकी पर्सनल च्वाइस है, फिक्स रेट भी आपकी पर्सनल च्वाइस है। अगर आपको घर नहीं बेचना 2-3 साल में, आप फिक्स रेट लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 6 महीने 1 साल में जब और अच्छे घरों की प्राइस हो जाएगी बेचेंगे, तो वेरिएबल रेट लें, क्योंकि वेरिएबल की पेनल्टी कम पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात है कि वेरिएबल का रेट अभी कम है, राइट, फिक्स का रेट थोड़ा ज्यादा है। देखें, सिचुएशन प्राइम रेट कल 7% भी हो जाए, बट फिक्स रेट एक दफा लॉक करवा लिया, वो चेंज नहीं होगा, वो आपके उसके अपने बेनिफिट्स है। अभी इस वक्त फिक्स जो है वो 4.19 से लेके 4.59% है, 3-5 ईयर फिक्स्ड, है ना। वेरिएबल रेट वो कम है, 3.49 से लेके 3.79 के दरमियान है, 3-5 ईयर। और काफी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइम रेट इंक्रीज हो सकता है ये वाले अनाउंसमेंट में, October 28, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, October 28 इज द डेट, तो इज अ बैंक ऑफ कैनेडा गोइंग टू अनाउंस। तो मैसेज यही है कि अपनी तैयारी 3-4 महीने पहले करें रिन्यूअल्स की, राइट किरण जी, और इसके अलावा आप शॉप अराउंड भी करें, और आपके देखिए मल्टीपल डेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड डेट्स हैं, सेकंड मॉर्गेज हैं, तो रिन्यूअल के टाइम पे अपने बैंक से बात करें कि आप उसको भी पे करना चाहते हैं, मगर आपको लग रहा है कि बैंक नहीं हेल्प कर रहा है या आपके कुछ इनकम इश्यूज हैं, क्रेडिट इश्यूज हैं, आप मेरी तरह किसी भी प्रोफेशनल को रीच आउट करें। आई एम हियर टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन जो आपके हक में बेटर है, जो आपके जिससे आपको सेविंग होनी चाहिए महीने की $2,000-3,000 की। अगर आपके देखिए रिन्यूअल एक अपॉर्चुनिटी है सेविंग करने का, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मिसेस सागर से, मिसेस सागर में होता हूँ मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 6 PM, सैटरडे को ओनली लिमिटेड टाइम। सो दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजन। नंबर टू कॉल मी 6475127000, 6475127000।
1: बिल्कुल मुकेश जी, एक सवाल मेरा और है, वो हम क्विकली जो है कवर कर लेते हैं। अच्छा, अगर जो है होम ओनर्स को जो है बैंक ने ऑफर भेजा क्योंकि रिन्यूअल आ रहा है ना, सो इंटरेस्ट रेट हाई है, स्टिल हमें स्विच करके देखना चाहिए, शॉप अराउंड करना चाहिए कि जस्ट सिंपली हमें वो साइन कर देना चाहिए कि जो है ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है?
2: देखें, ट्रांसफर के दो रीजन हो सकते हैं ट्रांसफर करने के। अगर आपका मॉर्गेज लिए हुए आपको 15 साल पहले ली थी, 10 साल पहले ली थी, तो आप उनको रीफाइनेंसिंग करके उसकी एमोर्टाइजेशन इंक्रीज कर सकते हैं। जब एमोर्टाइज आप जैसे दोबारा 30 साल की करोगे तो महीने की किश्त आपकी $1,000-2,000 कम हो सकती है। मैं इम्पोर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, काफी लोगों को नॉलेज नहीं है, काफी लोग ये समझते हैं, काफी लोगों का मन में ही होता है कि रिन्यूअल का टाइम पे दोबारा बैंक इनकम डॉक्यूमेंट मांग लेगी या आपको है ना डॉक्यूमेंट, बैंक आपकी इन्फॉर्मेशन, अगर बैंक को कोई डाउट होगा तो मांगेगी, अदरवाइज नहीं मांगेगी, 99% पे नहीं मांगती है। दूसरे केस के अंदर यह है कि अगर आपको स्विच करना तभी फायदा है जब आपको अगर उसकी मंथली पेमेंट बहुत ज्यादा पड़ रही, जैसे एग्जांपल है आपकी TD बैंक या RBC बैंक के साथ है, आप वो चाहते हो मॉर्गेज आपकी जो है बहुत ज्यादा है, आप चाह रहे हो कम हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको रीफाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, एमोर्टाइजेशन कम बढ़ानी पड़ेगी, मंथली पेमेंट आपकी शॉर्ट हो जाएगी। और हाँ, और साथ साथ ये कि आपके मल्टीपल डेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड डेट्स पे करने हैं, घर में इक्विटी है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स बिल दो तीन साल से नहीं पे किया, तो रीफाइनेंस के थ्रू ये सारे आप पे कर सकते हैं। तो वंस अगेन दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजन। इसके अलावा अगर आपको पास आपकी मॉर्गेज 2028 या 30 में रिन्यूअल है, आपको अलग से फाइनेंसिंग चाहिए, आपको इमीडिएट फंड चाहिए, ठीक है, कैश इन हैंड चाहिए 2-3 दिन में 4 दिन में, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। घर में इक्विटी होनी चाहिए, घर की वैल्यू चेक करवानी है, आप मुझे अपना घर का एड्रेस और नाम बता सकते हैं, मैं चेक करके बताऊंगा आपको, और मुझसे मिलना है तो मैं मिसिसागा में हूँ मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे फॉर लिमिटेड आवर्स। दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजन। नंबर टू कॉल मी 6475127000, 6475127000। किरण जी, नेक्स्ट टाइम हम कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग में कुछ बात आप कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग में जिनको अपना अपना घर हाउस बिल्ड करना है, जो कस्टम हाउस बनाना है, उसके लिए फाइनेंसिंग लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, अगर तो उसमें आपको कोई डिस्कस करनी है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कल बात हो सकती है 6475127000, 6475127000 ते तुसी मुकेश जी दे नाल जिहड़ी जी गलबात कर सकदे आ। और बिल्कुल जी, वीकेंड है, तुसी सारे वीकेंड नू करना होने जो है, ते आपां मिलांगे सोमवार जांदे जांदे। एक बारी फिर तुसी हरसिमरन सिंह जी नू इलेक्ट कर सकदे वार्ड 9-10 तो, जिहड़े कि रीजनल काउंसलर दे लई खड़े ने, ते ब्रैम्पटन सिटी काउंसलर वार्ड 9-10 तो बलजिंदर सिंह नहल, तुसी इन्हां नू इलेक्ट कर सकदे आ। ते फिर हुण गलबात करदे आ वार्ड 7-8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵੱਖੋਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ 6475028017 ਤੇ। ਔਰ ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 4165091509 ਤੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ।

0: ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ 170 ਗਿਲਡਨ ਰੋਡ ਜਿਨ ਨੰਬਰ 17 170 ਗਿਲਡਨ ਰੋਡ ਜਿਨ ਨੰਬਰ 17 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 647-302-1322 ਜੈਲੋ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ
1: ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ
2: Simply Indian brings you all simply.
3: Rocky, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
4: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
3: वाह, यार नंबर ता दई मोना जी दा।
4: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
5: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
4: 416-509-1509
5: और विजिट insuranceforyou.ca।
0: दोस्तों, देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नूं या चलो AM 530 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नु क्लिक करो, उत्ते तुसी सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7। दुनिया दे किसी भी हिस्से विच उड़ान भरन तो पहला एक नाम याद रखो, कोमल ट्रैवल एंड टूर्स। डेस्टिनेशन बेडिंग करनी है, शिप क्रूज ले जाना है, या फिर किसी आईलैंड ते हॉलीडेज वास्ते बुक करना है पैकेज, ता कोमल ट्रैवल इंडिया पंजाब लई डायरेक्ट फ्लाइट बुक करन वास्ते हुणे कॉल करो कोमल ट्रैवल ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 905-248-7011 9052397711 ਕੋਮਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰ।
6: ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ, ਰੀਜਨਲ ਰੋਡਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੀਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਆਈ ਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਰ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਫਾਰ ਚੇਂਜ, ਵੋਟ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ।
7: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ।
8: Solution to promote your business. Desh Pardesh Prime Time Radio and TV. Tohade Angsang 24 Ghante Satto Din. Hun tak Desh Pardesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vada karan waste Desh Pardesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551.

0: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
1: ਫਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
2: ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
3: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure 10 to sham 7 baje tak on dine-in and take-outs. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday, manpasand kulcha plate. Tuesday, chana patura. Wednesday, lajawab veg thali. Thursday, yummy haka thali. Friday, maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is simply Indian. This sariya hi locations te. Dining, take-out and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab, simply
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 416-457-3381
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनू ए कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नू प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: सेंट्रल मिसिसागा दे रहन वाले हो, ए मौका ना गवाओ। बैलीमोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स, जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने। कंटेम्पररी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने। सीमित समय ले HST दे विच खास बचत दा फायदा लो। हाईवे 401, 407 अते 410, गो ट्रांजिट, शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटां दी दूरी ते। सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होण दा मौका ना गवाओ। अज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com, BALLYMORE homes.com।